दूसरा सॉन्ग है, इस सॉन्ग करण औजला जी का लिखा हुआ सॉन्ग है, बड़ा ही